आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते उनके चरणों की छो प्राप्त होती, इतने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

जानता है, गुरु सूरज के माफिक है। ये बात अलग है, हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद किए। दरवाजे खोल।

महाराज जी वाणी चाहते हैं, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे, चार पदार्थ जे को मांगे, सात जना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे, जे को जन्म मरण ते डरे, सात जना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक तांके बल बल जासा। बाबा जी बाणी च आखदे हन नाव रूप भयो साध संग, नाव रूप भयो साध संग, केंद्र जड़ा साध संगत है ना, ये समझो एक किश्ती दी तरह है कि तुसी एक किश्ती च सवार हो गए हो, नाव मैंने किश्ती, अते जो साध संगत बैठ गया समझ लो वह किश्ती दे विच बैठ गया है, जो किश्ती उसनू इस जन्म मरण दे पव सागर दे विचों पार कर दे। नाव रूप पयो साध संग, तो इस शब्द दे विच गुरु बाबा जी ने दस्या है कि साधु सानू की रास्ता दसते हैं, की मार्ग दसते हैं। बहुत ही सिंपल जवाब देता है, बहुत गौर नाल ध्यान नाल सुनो, मन नूं जोड़ के, हर मार्ग साधु दसिया, साधु ने ए मार्ग दसिया कि जपिए गुरमंत। साधु कहता है गुरु मंत्र जपो, गुरु मंत्र का जाप करो, साधु ये मार्ग दसते हैं, हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत। सिंपल गल, आसान गल, साधु ने यह नहीं क्या मेरी पूजा करो, यह नहीं क्या कोई मेरा मंत्र जपो, साधु पूर्ण साधु कदे भी ऐसा नहीं करेगा, वो कहेगा गुरु का मंत्र जपो, गुरु दे नाल जोड़ेगा, प्रपेयर करेगा, समझाएगा, घड़ेगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता जिज्ञासु ओह गुरु दे मंत्र दे नाल जोड़ सके, गुरु दे नाल जोड़ सके। इस दे विच नुक्ता समझने वाला है,

राग कल्याण कुपाली दियां सुरावलियां विच सर्व दुखां नूं निवारण वाले पार ब्रह्म परमेश्वर प्रति इउं जाचना कर रहे ने।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुच्ची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलह भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

विभास ते प्रभाती रागां दे सुमेल राग विभास प्रभाती दियां मधुर सुरावलियां विच भगत कबीर जी उपदेश दे रहे ने। प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा।

दक्षिणी संगीत परंपरा दे राग प्रभाती दक्षिणी दे नादात्मक प्रवाह विच साहेब श्री गुरु नानक देव जी

बने हैं ते पानी के जानवर मछलियां मांस बने कई जन्म बने हैं ये नहीं पता पई किसे दी मच्छी नू कुंडी पै गई है तो आ गई है निकल के पानी तो बाहर जो उथे मर गई है क्योंकि उसका आधार पानी है उसका जीवन पानी है उसकी प्रीति पानी नाल है पानी तो कटो ते मर गई पर जून तक भोगी ना उसने

0: बड़ी मुद्दत तो बाद बड़ी मुद्दत तो बाद यह जन्म प्राप्त हो गया। भावें पढ़ने आया प्यो फलान जन्म सी फिर मुड़के आ गया फिर आ गया उसनु फिर जन्म पै गया मिल गया तो उन्हू थोड़ी जी खबर अपने पुराने जन्म की है ये बारहों पढ़िया मैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह अटल फरमान असि तो गुरु साहब देने आई है ना इन्हों फरमान इन्होंने वचन प्रवचन सतगुरु वचन तुम्हारे अटल ने वह कहते ने कबीर मानस जन्म तो लंब है होए ना पारे बार अगे फिर मिसाल है जो मन भर पाके होएंगे और ना लगे डर दोबारा यह जन्म प्राप्त नहीं होना भाव मानस जन्म नहीं मिलना मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया। एक बंदे के सिर में खारिश बहुत है बहुत तकलीफ है दोनों हाथों नो खनू ही जाता है कई बार तो खनूद्या नाखन खून भी लग जाता है पर परेशान बड़ा है। आम एक खान है कि खंघ और फुरक कि लकोलो ये प्रगट हो ही जाते किसी स्याणे ने बंदे नूं कहा बड़ी तकलीफ विच आ तू इहदा कोई प्रबंध कर कहिंदा सुनो वड्डिया ज्ञानियां इहदा तां कोई नहीं मैं चल लूं मैनूं इह दस भी अज इस नेर कोठी विच मैं बड़ गया हां इहतों बाहर किवें निकला ऐडा महल ते इहदे विच नेर कोठी विच मैं बड़ गया हां मेरे कर्मां ने वाड़ दित्ता है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह बारह माह के आरंभ में कहते ने इंसान देख तू अपने वाल दो कारण करके तू प्रभु नालों विछड़ गया है। वो कहन लगा इंज कर इस महल की जिस कोठी च वड़िया है तेरे सज्जे हत्थे दी कंध है कंध नाल हाथ ला के तुरिया रे बापू जी भेजदा ना बुलाया फिर इतने बैठ के खिमा करा है मैं भी सॉरी मंगता जी हां जी तेरे सज्जे हत्थ दीवार है वो कहना मैं नेत्रहीन भी हां वाहगुरु जी कहते हम अंधले अंध बिखे बिखराते असि अन्ने हाँ भाव साडा ज्ञानवान कोई नहीं साडे ज्ञान दे और बिरों दे चक्षु नहीं हैं मैनू दस कहंदा ले मैं तेरा हाथ दीवार ना लवा दिना ऐ तुरिया रे तुरिया रे तुरिया रे तुरिया रे जिथे दरवाजा आऊ ना उस झट बाहर निकलने पर इहदे माड़े भागा नूं इन हाथे ला लिया पर जिस वेले दीवार दे कोल आउण लगदा छड़िया ना उसने खुर करन लग पैंदा तुरिया तुरिया दरवाजा निकल जांदा दरवाजा निकल गया इह दो चार चक्कर मारे दरवाजा निकल गया बेचारा अंदर तड़फ के मर गया। हुण तरीका यही है भई इस जन्म विच आके सतसंग जी मनुखा जन्म विच आके प्रभु का सिमरन बारंबार बार बार जपिए पी अमृत मन तन तरपिए इथों की बाहर निकल होना इसे जन्म ऊट नूं कुछ नहीं पता शेर नूं कुछ नहीं पता कुत्ते नूं कुछ नहीं पता। देखो जिन्हें ज्ञानी ने जिन्हें विज्ञानी ने जिन्हें महापुरुष ने जिन्हें संत जन ने जिन्हें महात्मा ने जिन्हें गुरु पीर होए हैं सारे यही समझाते हैं पर यदी हाल आवाज गुरु ग्रंथ साहिब शासन एक बार अगवान आपको सतनाम यदि हाल उस बंदर वर्गी है जिन मार्केट मुश्की अनाज की मन बौरा रे एक बर्तन है उसका छोटा जहा गलमा है हेठों बड़ा लंबा चौड़ा है बंदर ने देख लिया कि ये खिल्ला पईया ने दाने पै ने उन हाथ पा लिया हाथ पा के मुठ पा लिया दाने हूं मुठ जा बहर न वो नहीं निकलती मरकट मुश्ती अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छुटन को सहसा परे एक छड़दा नहीं दाने छड़ दे हाथ निकल सकता है पर दाने पकड़े मुड़ समेत कड़ी चाहता नहीं निकलता। हुण होया कि गुरु साहब कहते ने नाचो घर घर द्वार मार वो लैके ना नचता फिरता घर घर द्वारे द्वार जाता है छुटन को सहसा परे इसे जन्म में आके इस गल ਸ਼ਹਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਆਣਿਆ ਸੱਸ ਜੀ ਆਖੋ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ
1: ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਆਣਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਰ ਜਿੰਦਗੀ ਆਸ ਜੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ।
0: ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਸਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਰ ਖਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਫਸ ਗਿਆ, ਮਰਗ ਮੁਸ਼ਤੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਮੋਰਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਹੱਥ ਪਸਾ ਚੂਟਰ ਕੋ ਸਰਸਾ ਭਰੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਮੁਕੱਦਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੱਤ ਦੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਾ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਇਨਸਾਨ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਕੀਰਤਨ, 3 ਤੋਂ 4 ਕੀਰਤਨ, 6 ਤੋਂ 7 ਕੀਰਤਨ, 7 ਤੋਂ 9 ਆਸਥਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਦੁਪਹਿਰੇ 11 ਤੋਂ 12 ਕੀਰਤਨ, ਫਿਰ ਘੋਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਠਾਲੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਆਪੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਛੂਟਣ ਕੋ ਸਹਿਸਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਦਾਨ ਦੀਵਾਨ ਮਕਾਨ ਨਾਦਾਨ ਗੁਮਾਨ ਨਾਇਨ ਕਰੋ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀਵਾਨ ਮੈਨੇ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਮੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਚੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੈਸਾ ਭਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰ ਯਾਰ ਜਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਹੈ,

0: मत्ते कुला विसर राजित नाना
1: दौलत दाम दीवान मकान नादान इस नादान बंदे ने सिर तोड़ सिर ते पैर रख के इन्ना सब कुछ बनाया नादान पे मेरा हुक्म हासिल होवे मेरे को चार कोटा भी बढ़िया हो ते फिर इन्हों का गुमान करी बैठा है। वाह वाह एक ने आके कहा धर्मराजा नू मेरा राज सी वो कहन लगा गलत बात है ये तो तेरा प्यो जदों सी वो भी कहंदा सी मेरा राज है तेरे प्यो नू पुछया पे केदा राज है वो कहंदा मेरा जदों वो चल गया तो पिछली पीढ़ी देख लो तेरे दादा भी यही गल कहंदा सी तेरा पड़दादा भी यही गल कहंदा सी तेरा नकड़दादा भी यही कहंदा सी पांच छह पीढ़ियां तो तेनू गुणा दे नकड़दादा पड़दादा दादा प्यो तू ये सारे कहंदे सी मेरा पर तू हुण जा रहा हुण किहदा है हुण किहदा तेरा नहीं है। नादान ने सारियां बातां कहियां दौलत दाम दीवान मकान नादान गुमान नायक करो एदा गुमान ना करो असि एदा ही करी जांदे। राजा साहब का बचन देखो बरसी मनाण का तां फायदा है जे असि उन्हां का बचन सुनीए और उन्हां का बचन मनीए। अगली बात है जी कहंदे जिहड़े तेरे नाल शरीक जुड़े हो ना तेरे घर वाले तेरे पुत्र धीआं रिश्तेदार गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे ने पूर्व जन्म के मिले सहयोगी पिछले कर्मां दे जिवें खूह दीआं टिंडां जुड़ियां पईआं ना खाली तुरी जांदीआं भर के आ जांदीआं खाली तुरी जांदीआं पानी डुली जांदा ते तेरे पूर्व जन्म के मिले सहयोगी अंते को ना सहाई सहाई वजन ही मारे। धन्यवाद मैनू डाउट सी थोड़ा जिहा बहुत मेहरबान ए तियां पुत्र रिश्तेदार तेरे घर वाली और तू पूर्व जन्म के मिले हुए हो ते अखीर वेले वे किसे ने नहीं जाना जे जाना तो कहीं जाना जे मात पिता सुत मीत ना भाई मन मुहाना।

तो जिन्हों ने भी सच्चे दिलों उस परमेश्वर की भगती की उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने अपनी गोदी विच बिठा लिया। जुगो जुग अटल हो गए, अमर हो गए।

परमेश्वर ने बेअंत बख्शिशां कीतियां होईयां सन। आप दा जन्म बेशक चंबियारां दे घर दा सी, पर निरंकार दे घर विच कोई जात पात दी पुछ नहीं, उत्थे तां गुणा दे पुजारी हन, गुणा दी पूजा होनी है। अगे जात ना जोर है, अगे जात नहीं पुछी जानी। हजूर दी बाणी कहती है, सब ते उत्तम गणो चंडाला, नानक जह मन बसे गोपाला। जे जात दा नीवा है ते उदे मन विच वस गया है श्री वाहिगुरु, ता ओ सब तो उत्तम है। सब तो उत्तम जाति किस दी है? सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। उच्ची जाति किदी है? जेड़ा भाई सास ग्रास मालिक

सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका जह प्रीत नाही भगवंत। बेशक कुल उची होवे तनी होवे पर गुरु दे चरणा दा प्यार नहीं ता उदी कोई दरगाह विच पुछ नहीं होवेगी। उचारण करो श्री वाहेगुरु। भगत रविदास जी जो सास ग्रास भगती विच जुड़े रहंदे सन और आए गए प्रेमिया दे जोड़े गंड ने जितना कोई दे गया है वो ले लेना ते मंगना नहीं किसे कोलों भाई इतनी मजूरी मैनू दे। ते महापुरखां पासों और गरीबां पासों ता आप ही नहीं सन कुछ लिया कर दे। उस परमेश्वर दे बंदे समझ के धन भाग समझ के उन्हां दी

भगत जी दे चरण पकड़ ले, भई मैं लोभी हां, जो गंगा ने तुहाडे लई भेटा दित्ती सी मैं लालच विच आके अपने घर रख ली, तुहानू नहीं मोड़ी। राजे नू दिता, उसने काफी इनाम भी दिता सानू, पर राजे ने हुण जिद कर ली है कि इहदे नाल दा कड़ा हो।

महापुरख पारस हुंदा है ते पारस दे नाल लोहा शो जाए ते फिर सोना हो जाता है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। भगत रविदास जी ने जिथे बह के जोड़े ठोकरे सन, जुतियां ठोकरे सन, ओ पत्थर चुकिया ते कहन लगे आ इथों लै लै जितने कड़े चाहिए नहीं पाई। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। हैरान हो गए क्योंकि त्याग दी मूरत सन भगत रविदास जी, और संत होंदे भी त्याग दी मूरत हन। महापुरखां दी कमाई उदों ही सिमरन उथे ही रुक जांदा है जदों ओ बखेड़ियां विच पै जांदे हन, माया दे लोर विच लुर पैंदे हन। महापुरख त्याग दी मूरत होंदे हन। सब तो पहला संसार नूं, संसार दे मोह नूं त्यागना, फिर माया दे मोह नूं त्यागना, उस तो बाद फिर प्रतिष्ठा उस्तत निंदा दा

दीख्या लई उपदेश लिया उचारण करो श्री जदों आके उपदेश लिया क्योंकि आप बनारस रहिंदे सन भगत जी ते जितने ब्राह्मण सन सारे ही नाराज हो गए भाई वेखो उच्च कोटी दे उच्ची कुल वाले

आए जदों आनंदपुर साहब दरबार विच नहीं गए, उत्थे आए जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा सोहना बाग सी, ते बाग दी सेवा कर रहा है भाई केसरा सिंह, आके चरणा विच बेनती कीती, भाई साहब कृपा करो सानू ऐसा मार्ग दसो कि साडे कोल एक सिख दी हत्या हो गई है, जो पानी मंगदा मंगदा चलिया गया, असी उहदे मुंह विच घुट पानी दा ना पाया, ते हुण असी ए अपने सिर ते पिया होया गुनाहा साडा कीता होया पाप किवें बख्शिया जावे, ते सानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन होण। भाई केसरा सिंह ने आखिया तुसी इसे बाग दी सेवा करो, समा आएगा तुहानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन भी होण। भाई केसरा सिंह रोज अमृत वेले आ फुलां दी सोहना एक सेरा बना के लै जांदा सी, ओ सेरा माता जीतो जी जदों धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दरबार विच आउंदे सन तां उन्हां दे गल विच पाया करदे सन, ओ सेरा अज सोइना बोइना ने अपने आंसुआं दे नाल परोया तैयार कीता, आख्या भाई केसरा सिंह लै जा साडी बेनती, ते पातशाह नूं कही साडे वास्ते की हुक्म है। जदों भाई केसरा सिंह सेरा लै के आया, ऐसे प्यार नाल गुद्दिया होया सेरा, जिसदे एक एक फुल ते सोइना मोइना ने पता नहीं कितने कितने अथरू डेगे हैं। जदों माता जीतो जी नूं लिया दिता, जो धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह दे सुपत्नी सन, लो माता जी, माता जी कहण लगे भाई केसरा सिंह अज बड़े प्यार नाल सेरा गुद्याई, एडा सोहना सेरा, आख्या ये मैं नहीं गुद्या, ये कोई दो सोइना ते मोइना दनपति आए हन, ये उन्हां गुद्या, ताही ये धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आ गए। माता जीतो जी ने सेरा साहब जी दे गल विच जदों पाया, अंतरजामी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहण लगे भाई केसरा सिंह आ बेशक उन्हां नूं जाके कह दे सोइना मोइना नूं बाग दी सेवा जरूर करन, लेकिन जदों असी बाग विच आईए तां साडे मत्थे ना लगन। साध संगत बोलो श्री क्योंकि साडे सिख ने वचन कीता है कि तुहानूं ठाकुर दर्शन नहीं देणगे। वापस आया भाई केसरा सिंह, मन बड़ा उदास है, सोइना मोइना समझ गए कि अजे हुक्म नहीं मिलिया, रोज नाम जपदे हन सेवा करदे हन। एक दिन रात दा समय दोनों अपनी झुग्गी विच बैठे शब्द गा रहे हन, मन बैराग भया दर्शन देखने का चाव, ताई बुआ खड़किया, बुआ खोलिया की वेख्या माता जीतो जी खड़ोते, आख्या मेरे बच्चियो फिक्र ना करो, जिस प्यार नाल तुसी गुरु घर दी सेवा कर रहे हो नाम जप रहे हो एक दिन ओ जरूर आवेगा, मेरा मन कहिंदा है जदों तुहानू कलगीधर पातशाह दे दर्शन होणगे। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। पौ सतवीं दा दिन नेड़े नेड़े आ रहा, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा अवतार पुरब, सोइना मोइना ने सोहने फुल तैयार कीते के जाके साहब जी दे चरणा विच भेटा करके गुलदस्ता बना के सोना भेजांगे। एक दिन विच रह गई, अगले दिन पो सतवीं दा दिन सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे आगमन दा, प्रकाश उत्सव दा, ताई रात एक रोड़ा जलाली करके फकीर आया, उसने सारी क्यारियां विचों फुल तोड़ के ले जाण लगा, सोइना मोइना ने जदों ए वेख्या ते चरण पकड़ ले, आख्या ए फुल तेरे वास्ते ने, ए फुल असी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वास्ते सजा के रखे, तां ओ कहण लगा जे मैनू फुल ना दियोगे तां मैं तुहानू श्राप दे के जावांगा। कंब गए, गश खा के दोनों डिग पए, सर्दियां दी रुत है, दोनों दी लोथां बाग विच पईयां। जदों सवेरे रोड़ा जलाली फकीर फुलां लै के गुलदस्ता बना के धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे चरणा विच पहुंचिया, अज पौ सतवीं दा दिन, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा जन्म दिन,
ਸਾਰੇ ਪੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਰੋੜਾ ਜਲਾਲੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੜਬਕ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਆਖਿਆ, ਉਹ ਰੋੜਾ ਜਲਾਲੀ, ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਜਲਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਪਲਾਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਆਏ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਇਨਾ ਤੇ ਮੋਇਨਾ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਕੇ ਪਏ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਸੋਇਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮੋਇਨਾ ਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਲ ਲਿਆਓ, ਜਲ ਦੇ ਛੱਟੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਆਖਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੋਹ ਸਤਵੀਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਤੁਹਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ। ਅੱਜ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋਚਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਔਰ ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਖੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਿਆ, ਸਾਈ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ, ਫਰਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਨਾ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਬੇਨਤੀ, ਮਨ ਹਿਰਦਾ ਔਰ ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੁਕਾਰੇ ਕੀ।

निवासी खालसे मैं हूं करो निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हूं सद सद संगा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कैयत बिरद, खालसा मेरो पछ अर पाता, खालसा मेरो सुख एलादा।

सा मेरो मित्र सिखाई। खालसा मात पिता सुखदाई, खालसा मेरी शोभाशीला, खालसा बंद सखा सद डीला। खालसा मेरी जात अरपत, खालसा मेरी जात अरपत, खालसा सो माँ को उत्पत्त।

मान मैं तू मेरो खालसा सही, खालसा मेरो स्वार्थ सही। खालसा मेरो स्वार्थ सही, खालसा मेरो करे निर्वाह, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो करे निर्वाह, खालसा मेरो दे अरसा, खालसा मेरो, खालसा मेरो धर्म अर कर्म, खालसा मेरो पेद निज मर्म, खालसा मेरो सतगुरु पूरा,

जेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। या मैं रंच न मिथ्या पाकी। मैं झूठ नहीं कह रहा, एक जरा पर भी, एक छिन पर भी, इदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौंख आके कहना। या मैं